0: करनी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, सुप्रभात। आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी बता रही है, समय हो रहा है 10:12:15। मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है 10:02 पर ही। और ये जो पहिए हैं ना इस कार्यक्रम के, एक तो गीत और दूसरी बातें, बस इन दोनों के सहारे हमारा ये सफर जारी रहेगा दिन के 11 बजे तक। और अब समय हो चला है कोलकाता के मौसम का हाल जानने का, तो आइए नजर डालते हैं अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान पर। कोलकाता में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। वहीं दोपहर से लेकर शाम के बीच शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी जताई गई है।

तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान तकरीबन 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। यानी कि गर्मी और उमस दोनों अपना असर बनाए रख सकते हैं। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर भी काफी ऊंचा रहा। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 91% और न्यूनतम 66% दर्ज की गई। अच्छी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मछुआरों के लिए फिलहाल किसी तरह के मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मई की तपिश के बीच अगर बादलों की हल्की दस्तक मिल जाए तो मौसम भी थोड़ा सा सुहाना लगने लगता है। तो देखते हैं कि आज के दिन जहां कहीं कहीं बादल और हल्की बारिश की संभावना है, ये बारिश की बूंदें हमारे जिंदगी में कितना ठंडक ला सकती है। फिलहाल इतना ही मौसम का हाल। मौसम से जुड़ी हर ताजा जानकारी हमारे साथ सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ।

0: चुटकी नुस्खे। एक चुटकी नुस्खे। गर्मी के मौसम में कमरे को सजाने का मतलब सिर्फ खूबसूरती बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसे ठंडा, हल्का और आरामदायक महसूस कराना भी होता है। चाहे आप कितना भी एसी का इस्तेमाल कर ले, वैसे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो नहीं है और हमारे शरीर के लिए भी एसी की ठंडक बहुत फायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए कोशिश यही करनी होगी कि अपने कमरे को किस तरह से सजाया जाए ताकि कमरा तापमान के नज़रिए से ना सही पर आपके और हमारे नज़रिए से थोड़ा सा ठंडा महसूस हो। कुछ आसान तरीकों से आप अपने कमरे को बिल्कुल फ्रेश समर लुक दे सकते हैं। सफ़ेद, क्रीम, हल्का नीला, मिंट ग्रीन, पेस्टल शेड्स कमरे को ठंडक का एहसास देते हैं, तो हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। गहरे रंगों की जगह हल्के रंग के कुशन कवर, बेडशीट और पर्दे लगाएं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर समर में आप अपने कमरों की पेंटिंग जो है उसे बदल डालिए, वो तो इम्पॉसिबल है, पर अपने आसपास यानी जो भी अपहोल्स्ट्री है जैसे कुशन कवर्स, बेडशीट्स या पिलो कवर्स वगैरह, इसे तो आप ज़रूर बदल सकते हैं। सूती कपड़ों को प्राथमिकता दें। कॉटन की चादरें, पर्दे और कुशन कवर गर्मी में सबसे आरामदायक रहते हैं और ये हवा को आसानी से गुजरने भी देते हैं। इनडोर पौधे लगाएं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरिका पाम जैसे पौधे कमरे को ताजगी देते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। भारी पर्दों की जगह श्योर या कॉटन कर्टन्स लगाएं ताकि प्राकृतिक रोशनी आती रहे और कमरा खुला खुला लगे। लेमन, लैवेंडर या मोगरा जैसे हल्की खुशबू वाले डिफ्यूजर या कैंडल्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वार्म येलो लाइट की जगह सॉफ्ट वाइट लाइट गर्मी में ज्यादा सुकून देती हैं। कमरे में बहुत ज्यादा सामान हो तो गर्मी और घुटन महसूस होती है। मिनिमल सजावट गर्मियों में बेहतर लगती है। एक छोटा सा समर कॉर्नर बना सकते हैं। एक आरामदायक कुर्सी, छोटा पौधा और किताबों के साथ रीडिंग कॉर्नर बनाइए। गर्मी की शामें और भी खूबसूरत लगेंगी।
1: एक चुटकी नुस्खे। थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। Non-stop gupshup 107 FM Rainbow Bud FM Rainbow Bud।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन जी हाँ, आज के दिन यानी कि 23 मई के दिन हुआ क्या था दुनिया में, क्या हुआ था दुनिया में जिसे दुनिया ने, इतिहास ने याद रखा है। में नीदरलैंड्स ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी आज के ही दिन। 1785 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने मित्र जॉर्ज वॉटली को लिखे एक पत्र में बाईफोकल लेंस के अपने आविष्कार का वर्णन किया था। 1853 में ब्यूनस आयर्स को अर्जेंटीना से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन 1859 में वो वापस अर्जेंटीना के साथ जुड़ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी आज के ही दिन। 1922 वॉल्ट डिज्नी ने अपनी पहली फिल्म कंपनी लाफ ओ ग्राम फिल्म्स की स्थापना की थी। 1932 में ऑस्ट्रेलियाई साइकिल चालक ह्यूबर्ट ओपरमैन ने मेलबर्न मोटोड्रोम में 24 घंटे में 1384 किलोमीटर और 28 घंटे 55 मिनट और 39 सेकंड में 1609 किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था आज के ही दिन। 1945 में मित्र देशों ने एडमिरल कार्ल डोनिट्ज सहित नाजी फ्लेंसबर्ग सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे नाजी जर्मनी औपचारिक रूप से भंग हो गया। अगर आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बता दूं आप किन लोगों के साथ अपना जन्मदिन साझा करते हैं। आज 23 मई है, जी हाँ, आज जयंती है जयपुर की महारानी गायत्री देवी का, जिनका जन्म 1919 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और आज अपना जन्मदिन मनाते हैं रूस के शतरंज खिलाड़ी एनाटोली कारपोव, जिनका जन्म 1951 में रूस में हुआ था। आज के दिन
1: मन की बात है, जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

और देखते ही देखते घड़ी बता रही है समय हो रहा है 10:43 और 45 सेकंड। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप दीपजानी के साथ। यह है आपका अपना 107 रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल एक और गीत और कुछ बातें भी। स्टे ट्यून्ड।

0: Akashwadi at 90.
1: Kolkata culture. जी हाँ, कोलकाता कल्चर यानी कि शहर कोलकाता में और उसके आसपास क्या हो रहा है, आज इवेंट क्या है जहाँ आप जा सकते हैं, अपने वीकेंड को उस तरह से प्लान कर सकते हैं। शहर के एक ऑडिटोरियम में आज चंद्रो बिंदु का म्यूजिकल शो है, सामा रे गा। इसके साथ ही साथ और क्या है, हाँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं। जैसे कॉमेडी टेक्नो नाम से एक शो है, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है गड़ियाहाट में एक कैफे में। इसके साथ ही साथ आज ही एक वेज स्टैंड अप कॉमेडी शो है शाकाहारी नाम से। साथ ही साथ शहर के दक्षिण कोलकाता के एक शॉपिंग मॉल में डाइनो वर्ल्ड एक्सपीरियंस नाम से एक इवेंट्स है, आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, हो सकता है उन्हें मजा आएगा डायनासोर्स को देखकर।
2: कोलकाता कल्चर।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: तो बस मेरे जाने की घड़ी नजदीक है, 10:54:30 समय हो रहा है। फिलहाल आज के इस एपिसोड ऑफ नॉनस्टॉप गपशप से मैं देवजानी लेती हूँ इजाजत। दोबारा मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं 100.1 एफएम गोल्ड, जहां पर मैं रहूंगी 11:10 से लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। फिलहाल इस गीत के सहारे आपको छोड़ जाती हूँ और आपको ये बताकर जाती हूँ कि आपका आज का दिन बेहद बेहद खूबसूरत गुजरे। वीकेंड की शुरुआत कुछ लोगों के लिए हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए आज बस किसी तरह से आज का दिन गुजार दें तो बस कल वीकेंड है। तो जैसा भी है, आप अपने वीकेंड को अच्छे से इंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और खुद के साथ। फिलहाल ये गीत आपके लिए

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

आ गए गर्मी के दिन, रखना अपना ख्याल, कहीं ये लू वाली गर्मी ना मचा दे बवाल। 3:05 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का पूनम के संग, ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेन।

3:15। और इस हफ्ते कुछ बेहद दिलचस्प और बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं और इनमें रोमांस से लेकर हाई लोन थ्रिलर तक हर तरह का स्वाद देखने को मिल रहा है। चांद मेरा दिल,

कलाकार अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी, और डायरेक्टर हैं विवेक सोनी, और रोमांटिक ड्रामा टाइप फिल्म है। और ये एक बेहद जुनूनी और गहरी प्रेम कहानी है जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और मेकर्स ने इसके लिए 149 रुपए के सस्ते टिकटों का ऑफर भी रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देखने पहुंचे। फिल्म सिस्टम भी रिलीज हुई है। मुख्य कलाकार सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर। डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी। कोर्ट रूम थ्रिलर लीगल ड्रामा है ये, और ये कहानी है एक अमीर बैकग्राउंड से आने वाली पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक साधारण कोर्टरूम स्टेनोग्राफर की। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद सिस्टम के बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाती हैं। क्या बात है। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ओन 107। आगे आप सब जानते हैं।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परियोजना प्रस्तुति और मैं हूं आपकी आज पूनम। और आज इस सेगमेंट के अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं पीएम कुसुम योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना। यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर किसानों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इस योजना को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य डीजल और बिजली पर निर्भरता को कम करके किसानों को उनके खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी के रूप में बड़ी वित्तीय सहायता दी जाती है। आमतौर पर किसान को परियोजना की कुल लागत का केवल 10% वहन करना होता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लगभग 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती हैं और शेष 30% राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना किसानों के लिए दोहरी आय का स्रोत सुनिश्चित करती है, एक तो सिंचाई की लागत में कमी के माध्यम से और दूसरा बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई के माध्यम से, जिससे कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सके। मैं हूं आपकी आज पूनम और आप सुन रहे थे परियोजना प्रस्तुति। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए विषय के साथ।
0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

3:28। और इस हफ्ते और एक फिल्म रिलीज हुई है, तीसरी बेगम। मुख्य कलाकार जरीना वहाब मुग्धा गोडसे और सुप्रिया कार्निक, डायरेक्टर हैं केसी बोकारिया। और सोशल ड्रामा क्राइम टाइप फिल्म है। जाने माने डायरेक्टर केसी बोकारिया की यह फिल्म आज के दौर की युवा महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक गंभीर मैसेज देती है। जून 2026 में बॉलीवुड की कुछ बहुत बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। और इस महीने आपको बड़े बजट की एक्शन फिल्मों से लेकर बेहतरीन कॉमेडी और सस्पेंस का डोज मिलने वाला है। हाउसफुल 5 5 जून को रिलीज हो सकती है। मुख्य कलाकार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडिस और नरगिस फाकरी। डायरेक्टर तरुण मनसुखानी। कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये भारत की सबसे सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक की अगली कड़ी है। और इस बार फिल्म की पूरी कहानी और पागलपन एक क्रूज शिप पर सेट किया गया है, जो दर्शकों को हंसी का डबल डोज देने का वादा करता है। और 19 जून को रिलीज हो सकती है फिल्म सन ऑफ सरदार 2। और मुख्य कलाकार अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, संजय दत्त और चंकी पांडे। डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा। और एक्शन कॉमेडी ड्रामा टाइप ये फिल्म है। साल 2012 की हिट फिल्म तो आप सबको याद ही होगी, जी हाँ, सन ऑफ सरदार। ये फिल्म उसी का सीक्वल है। इस बार फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड के खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है, जहां अजय देवगन अपने सिग्नेचर अंदाज में एक्शन और कॉमेडी करते नजर आएंगे। फिलहाल 3:30, बातें और भी हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

3:39। जून के आखिरी हफ्ते में रिलीज हो सकती है फिल्म रेड 2 और इसमें मुख्य कलाकार अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर, डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता। क्राइम थ्रिलर ड्रामा टाइप ये फिल्म है। ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक एक बार फिर देश के बड़े घोटालेबाजों पर सिकंजा कसने लौट रहे हैं। फिल्म में इस बार रितेश देशमुख मुख्य विलन की भूमिका में नजर आएंगे, जो अजय देवगन से लोहा लेंगे। यानी इस जून में बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन का दबदबा रहने वाला है, क्योंकि उनकी दो बड़ी फिल्में कतार में हैं, एक रेड 2 और एक सन ऑफ सरदार 2। अब देखना है कि ये दोनों फिल्में क्या कमाल दिखा पाती हैं। फिलहाल बॉलीवुड के गलियारे से कुछ खबरें हो जाएं। सिनेमाघरों में इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खास बात यह है कि मेकर्स ने दर्शकों को थिएटर

खींचने के लिए टिकटों के दाम काफी कम रखे हैं। अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल के टिकट कई जगहों पर मात्र 149 रुपए में मिल रहे हैं, जिससे वीकेंड पर सिनेमा घरों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। अक्षय कुमार की मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हाउसफुल 5 को लेकर नया अपडेट आया है। इस बार फिल्म की पूरी स्टार कास्ट एक आलीशान क्रूज शिप पर पागलपन और कॉमेडी का तड़का लगाती दिखेगी। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम तेजी से चल रहा है और इसे जून की शुरुआत में ही रिलीज करने की तैयारी है। फिलहाल 3:41 और फटाफट एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

3:50 और इधर मौसम का मिजाज कुछ इधर उधर होने वाला है। अगले 2 से 3 घंटों के दौरान वीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम वर्धमान जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है।

3:55 मिनट और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आगे, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम छायालोक। वक्त होगा 7:02 पर। और उसके पहले अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, और वक्त होगा 5:20। तब तक के लिए आ गया, हाँ जाते जाते खूबसूरत सा नगमा तो बनता है ना, तो फटाफट आप सबको सुनाई दे रही हूँ ये खूबसूरत सा नगमा, और इसी के साथ थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

0: 7:10 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक, और छायालोक के अंतर्गत जाने अनजाने
1: जाने अनजाने

गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम और फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, छायालोक के अंतर्गत जाने अनजाने। फिलहाल मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित का नाम सुनकर चार अभिनेत्रियों ने काम करने से इनकार कर दिया था। और इस फिल्म में कॉलेज की दोस्ती है और मोहब्बत की कहानी है। और 1997 में आई यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा शाहरुख खान भी हैं और करिश्मा कपूर भी। जी हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप सबको भी समझ में आ ही चुका है। जी हाँ, इन तीनों की बेहतरीन एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। और आज भी फिल्म के आइकॉनिक गाने 90s के बच्चों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तो आखिर वो फिल्म है कौन सी? आप सबको समझ में आया या नहीं? तो चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, फिल्म का नाम दिल तो पागल है। जी हाँ, दिल तो पागल है। इस फिल्म से जुड़ी और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत नगमा आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए।

7:25। अगले एक से दो घंटों के दौरान हुगली नदिया उत्तर 24 परगना और पूर्वी वर्धमान जिलों के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की संभावना है। तो इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है। फिलहाल 7:26 और मैंने कुछ देर पहले आप सबसे कहा था कि मैं किस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूं। जी हां, दिल तो पागल है।

दिल तो पागल है का टाइटल लेकिन पहले कुछ और था, आपको पता है? जानकर हैरानी होगी आपको कि पहले इस फिल्म का नाम रखा गया था मैंने तो मोहब्बत कर ली, लेकिन बाद में फिल्म का टाइटल दिल तो पागल है रखा गया। और यही नहीं, फिल्म में जब उर्मिला मातोंडकर थी तब इसका नाम देवर भी रखा गया था। और भी बातें हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के

0: संवाद तक।
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

कुमार शानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में फिल्म अकेले हम अकेले तुम से अपनी ये खूबसूरत सा नगमा सुना। और कुछ देर पहले मैंने आप सबसे कहा था, क्या कहा था, कि बातें हो रही थी दिल तो पागल है के बारे में। ये फिल्म माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों स्टार्स साथ नजर आए। हालांकि कैमियो रोल के लिए अक्षय कुमार को वादे के मुताबिक पेमेंट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से खिलाड़ी कुमार ने करीब 11 साल तक YRF के साथ काम नहीं किया। मैंने आप सबसे कुछ देर पहले यह भी कहा था कि चार एक्ट्रेसेस ने ठुकराया था निशा का रोल। निशा के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद करिश्मा कपूर नहीं थी, ये तो अब तक आप सबको समझ में आ ही गया है। उससे पहले जूही चावला, मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर और काजोल को भी रोल ऑफर किए गए थे। जूही ने फिल्म रिजेक्ट करने का कारण माधुरी दीक्षित को बताया था। काजोल को अपना किरदार पसंद नहीं आया और उर्मिला ने एक दिन शूटिंग के बाद यश चोपड़ा को मैसेज करके फिल्म करने से इनकार कर दिया था। और भी बातें हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

7:45। फिल्म दिल तो पागल है में अक्षय कुमार का कैमियो नहीं करने वाले थे, वो रोल वो करने वाले नहीं थे। इससे पहले यश चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ से भी संपर्क किया था, लेकिन भीड़ू दादा कहीं और ही बिजी थे। फिल्म के गाने ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर शाहिद कपूर नजर आए थे, और उस वक्त बॉलीवुड में शाहिद बिल्कुल नए थे और करिश्मा के साथ वो डांस स्टेप्स को मैच नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से करिश्मा को गाना शूट करने के लिए करीब 15 रीटेक्स लेने पड़े थे। और भी बातें हैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए।

एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने बताया था कि जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें दिल तो पागल है की स्क्रिप्ट सुनाई तो वो डर गई। उन्होंने कह दिया था कि माधुरी दीक्षित के साथ डांस परफॉर्म करना मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि उनकी मां ने कहा था कि करिश्मा कपूर को ये चैलेंज लेना चाहिए और फिर वो माधुरी की फैन भी हैं, तो फिर ये काम तो करिश्मा को ज़रूर करना चाहिए। और बस मां के कहने पर करिश्मा ने हामी भर दी।

8:08। और बातें हो रही हैं फिल्म दिल तो पागल है के बारे में। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह ने 100 धुनें तैयार की थीं, जिसमें यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए केवल 9 को ही चुना था। म्यूजिक तैयार करने में उत्तम सिंह को करीब 2 साल लग गए थे। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि फिल्म के गाने आज भी आइकॉनिक बने हुए हैं।

डीडीएलजे के लिए शाहरुख खान को यश चोपड़ा ने 18 लाख का भुगतान किया था और इसके बाद किंग खान ने अपनी पेमेंट बढ़ा दी थी। हालांकि ये बात यश चोपड़ा को पसंद नहीं आई थी, इसलिए फिल्म दिल तो पागल है में राहुल की भूमिका के लिए पहले आमिर खान से बात करने पर विचार किया जा रहा था। लेकिन ये बात जैसे ही एसआरके को पता चली, उन्होंने तुरंत यश चोपड़ा को कॉल किया और सभी तरह के मतभेदों को सुलझाते हुए फिल्म में राहुल का रोल पा लिया था। फिल्म में पूजा के माता पिता की भूमिका के लिए पहले अनुपम खेर और हेमा मालिनी से संपर्क किया गया था और फिल्म के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था करण जौहर ने। दिल तो पागल है के गाने एक दूजे के वास्ते में सभी क्रू मेंबर्स अपने जीवन साथियों के साथ आए थे। उस वक्त आदित्य चोपड़ा अपनी तत्कालीन पत्नी पायल खन्ना के साथ नजर आए थे। फिल्म में माधुरी दीक्षित को कथक सिखाया था डांस पंडित बिरजू महाराज ने। फिलहाल 8:16 और वक्त एक और खूबसूरत नगमे का, सुनते रहिए, साथ रहिए।

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में फिल्म जॉली एलएलबी से अजनबी। साल 2013 में रिलीज हुई थी अरशद वारसी की जॉली एलएलबी और फिर 2017 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 2। इन दोनों ही फिल्मों को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस ने बल्कि दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। यहां तक कि जॉली एलएलबी की रिलीज के 3 साल बाद 2016 में साउथ में भी तमिल भाषा में इस फिल्म का रीमेक किया गया, नाम रखा गया मनीथन। हालांकि साउथ की फिल्म बुरी तरह पिट गई। बॉलीवुड में लगातार पिट रही फिल्मों के बीच अब खबर है कि इस मजेदार कोर्टरूम डार्क कॉमेडी के तीसरे भाग को बनाए जाने की भी तैयारी हो रही है। 2022 में बैक टू बैक 3 फ्लॉप दे चुके अक्षय कुमार एक बार फिर जॉली एलएलबी 3 में वकील जगदीश्वर मिश्रा के किरदार में नजर आएंगे, जबकि इस बार मजा को दोगुना करने के लिए अरशद वारसी भी वकील जगदीश त्यागी के रोल में नजर आएंगे। यानी कि एक ही फिल्म में इस बार दो दो जॉली होंगे और जज की भूमिका में सौरभ शुक्ला ही होंगे। और भी बातें हैं जॉली एलएलबी से जुड़ी हुई, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आनंद मलिंद, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण, और फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। और फिलहाल मैं बातें कर रही हूं जॉली एलएलबी फिल्म के बारे में। साल 2013 में आई जॉली एलएलबी में संजय मिश्रा भी थे। फिल्म में गुरुजी का किरदार निभाया था उन्होंने। मजेदार जानकारी यह है कि इस रोल के लिए संजय मिश्रा ने फीस नहीं ली थी। जी हां, उनका रोल छोटा सा था और सिर्फ एक दिन की शूटिंग थी। ऐसे में डायरेक्टर सुभाष कपूर संग अपनी दोस्ती को देखते हुए संजय मिश्रा ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी। फिलहाल 8:28 अगला नगमा तैयार आप सबके लिए।

8:35। जॉली एलएलबी की कहानी एक हिट एंड रन केस पर थी। फिल्म की कहानी में जिस लैंड क्रूजर कार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसका ड्राइवर राहुल दीवान नाम का किरदार था। इस रोल में राजीव सिद्धार्थ थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में इस किरदार को एक लाइन का भी डायलॉग नहीं दिया गया, यानी जो आरोपी है, जिसे सजा होनी है, जिसने वारदात को अंजाम दिया, उसने कोर्ट में एक लाइन भी नहीं कहा। फिलहाल 8:36 और अगला नगमा एकदम तैयार आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:48। अब मैं आती हूं 2017 में रिलीज हुई जॉली LLB 2 पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार ने यह फिल्म रिकॉर्ड 30 दिन में पूरी कर ली थी। और यही नहीं, पूरी जॉली LLB 2 फिल्म में अगर आपने गौर किया हो तो अक्षय कुमार ने सिर्फ एक ही जूते

पहन रखे हैं। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं हिमेश रेशमैया। आवाज शान की और फिल्म का नाम प्रेम रतन धन पायो। और फिलहाल मैं बातें कर रही हूं जॉली एलएलबी 2 के बारे में। जॉली एलएलबी 2 में जिस इमारत को कोर्ट रूम बनाया गया, ये वही इमारत है जो जब वी मेट में करीना कपूर का वुमेन्स हॉस्टल है। वही हॉस्टल जहां से करीना को लाने के लिए शाहिद कपूर पहुंचते हैं।

अक्षय कुमार की इस फिल्म पर बाटा कंपनी में ने आपत्ति जताई थी। फिल्म में एक डायलॉग है जहां वकील के किरदार में अनु कपूर इन जूतों के ब्रांड का जिक्र करते हैं। फिलहाल 8:54 और अगला नगमा एकदम तैयार, और इसी के साथ पूनम को दीजिए आज के लिए आज्ञा। नमस्कार।